का सान्याता को राजा तो पानी सलाम नाकु को का सान्याता को कोचिनी साई तोलो।